नमस्कार नमस्कार नमस्कार इन्हें हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं साथ में सांगीतिक अभिवादन तो किया हूं कार्यक्रम गांबस्ती का आभार का श्रृंखला बाद कार्यक्रम गांबस्ती का आभार का पर्खाई में प्रतीक्षा में रहने भाग संपूर्ण श्रोता पर्खाई को घड़ी मेटना का उपस्थित भाई छू म आरती

0: लिएर आउनु होला। पुनश 70 वर्ष माथिका भूपुहरूलाई रिफरल चाहिँदैन।
1: विस्तृत जानकारीका लागि सरक मेमोरियल हस्पिटल नागथुङ्गा पोखरा, फोन 0165524935524945877878।

0: सुनोस ना, आइए हम लोग आने में 6 बजे
1: इस समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको 5 गरेता कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।
2: रेडियो आदि खोला 105.4
3: राष्ट्र को शान किसान
4: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस।

तपाईलाई मन पराएर मलाई तर्पाएर धानका उदयमान नक्षत्र तीर्थक हस्पी पवन विरही पाण्डेको एक तीर्थकता अब शब्द शब्दमा सीआरबीटी नम्बर 01300045429 सीआरबीटी नम्बर 6045652 स्वर नरेन्द्र प्यासी संगीत संतोष श्रेष्ठ गीतकार एसएन पाण्डे पवन मोबाइल में सीआरबीटी र पीआरबीटी डाउनलोड करी माया गर्नु।

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।